0: You can okay. see.
1: Wait.
0: Can they have baby to the.
1: Hindi mein bolo.
0: ये अपना बेबी स्ट्रेंज पीपल को भी देख सकते हैं.
1: एक मिनट मैं बता देती हूँ. तो मैंने इनको देखा एक बच्चे के साथ फोटो खिंचाते हुए और मैं इनके पास आई तो मैंने कहा कि आप इनके साथ बात करना चाहते हैं. तो बोलते ये मेरी बच्ची नहीं है, ये इनकी बच्ची है. तो मैंने कहा कि तो ये आपकी क्या लगती है? तो इन्होंने बोला कि ये मेरी कोई नहीं लगती है, हम जानते ही नहीं.
0: इन्होंने कहा कि आप फोटो खिंचवा सकते हैं. मैंने कहा ये सेफ फील कर रहे हैं देने में, वरना कहा इतना छोटा बच्चा.
1: ये तो जैन बीटा आ गया यहाँ पे.
0: हाँ, बिल्कुल.
1: आपने इस पूरे प्रोटेस्ट से क्या सीखा?
0: मैंने इस प्रोटेस्ट से ये सीखा कि अपने हक के लिए अगर इंसान लड़े तो उसे हर चीज अपना हक मिल सकता है.
1: आप अपनी आगे आने वाली जनरेशन को क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में?
2: यूनिटी. या
3: ये मेरा पहली बार है बिकॉज मैं कॉर्पोरेट मजदूर हूँ. तो मेरा बहुत मन था कि आज आके मैं फॉर द प्रोटेस्ट, लाइक फॉर द मूवमेंट में इधर आऊँ, लोगों को सपोर्ट करूँ. बट क्योंकि मेरा आज पहला दिन है और मैं उठते ही ये न्यूज मिला है कि रिजाइन कर दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने.
1: फिर से बताइए.
3: इट्स दासिल भुटिया.
1: दासिल. तो दासिल जब कॉर्पोरेट मजदूरी के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा तब आएंगी पक्का. तब तो जितने आगे हम जाते जा रहे हैं उतनी ही भीड़ बढ़ती जा रही है.
4: अच्छा काम किया है वो, अभी हमने अपने हक के लिए छीना है, इस सरकार ने अपनी मर्जी से नहीं दिया.
1: अच्छा फिर से बताइए.
5: हम आज ही आए थे, हमें ये नहीं पता था कि इस्तीफा हो जाएगा.
1: ओ, आप प्रोटेस्ट के लिए आए थे?
5: प्रोटेस्ट के लिए आए थे.
1: कहाँ से आए हैं?
5: कश्मीर से आए हैं.
1: कश्मीर से फ्लाइट लेकर आए आप?
5: फ्लाइट लेकर आए हैं. हमारा आने से पहले प्रोटेस्ट हो गया, खत्म हो गया. हम पहले से आ जाते तो इस्तीफा पहले से ही हो जाता.
1: अब तो यही सोचिए आप. वहाँ पर जो आप देख रहे होंगे टीवी वगैरह पे या टीवी पे या यूट्यूब पे वगैरह, तब क्या सोच रहे थे प्रोटेस्ट को लेके? क्या क्या दिमाग में चल रहा था?
5: प्रोटेस्ट को लेके दिमाग में चल रहा था, इस वक्त में सबसे अच्छी बात है, इस वक्त में अविजय दीप के सर की वजह से जो एक नैरो चल रहा था हमारे पूरे देश में हिंदू मुस्लिम वाला, सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा फेवरेट हुआ है वो खत्म हो चुका है.
1: अच्छा, आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम वाला अब नहीं
5: हुआ? इनका जो मुद्दा था सिर्फ मंदिर मस्जिद.
1: आप बड़े ध्यान से देख रहे थे, कुछ कहेंगे आप? आप आज ही आए हो यहाँ पर?
6: आज ही आया हूँ वहाँ पे.
1: आप आज देखने आए हो कि क्या हुआ था यहाँ पे, आप बताइए कुछ.
6: नहीं, मुझे पता तो सब था.
1: हुँ?
6: पर मैं बाहर गया हुआ था इस वजह से मैं आज आया हूँ. देख रहा हूँ ये सब, बड़ा बुरा लग रहा है.
1: क्यों?
6: जो ये चीज इन्होंने स्टूडेंट्स के साथ करी, ये मार पिटाई करी, नहीं लगता ना ये सब अच्छा.
1: पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी प्रोटेस्टर्स पे, ये वहाँ के फोटोज हैं. प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया लेकिन प्रोटेस्ट के निशान काफी लंबे वक्त तक रहेंगे. कुछ कुछ लोग यहाँ पर पोस्ट कर गए हैं कुछ कुछ चीजें. सारी चीजें तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं लेकिन कुछ कुछ मैसेजेस हैं. इथेनॉल 80%, डेमोक्रेसी 0%. बीजेपी द कंट्री इज वॉचिंग यू, वी आर वॉचिंग यू ऑन अप. जय भीम. भाई अभी तक ड्यूटी ही निभा रहे हैं आप, अभी तक ड्यूटी ही निभा रहे हैं आप.
7: देखो जो टेंट वाले होते हैं ना वो सबसे पहले आते हैं शादी में और सबसे लास्ट में जाते हैं. मेरा वॉलंटियर तो लोग आएंगे, इस्तीफा भी होगा, इस्तीफा के बाद लोग इंजॉय भी करेंगे, पर हम तो अपना काम करेंगे. मेरा वॉलंटियर
1: फॉर दिस प्रोटेस्ट और सीजेपी.
7: Nothing. Not for this protest. Not only for this protest. Not only for the CJP. We are a volunteer for this nation.
1: खबर मिली कि resignation आ गया, तब कैसा लगा?
7: बहुत अच्छा लगा. किसी को भी अहंकार नहीं होना चाहिए. ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमसे देश है. Sorry to say, आप लोग हो because हम है. और अगर हम नहीं होंगे तो देश नहीं होगा. ये मेरे हाथ में ब्रूम है, मेरे घर को नहीं पता है मैं हाफ डे लेके आया हूँ, वो मुझे पता है. मैं अपना मास्क नहीं हटाऊंगा. सॉरी टू से,
1: मैं आपका नाम भी नहीं पूछूंगी. ये था टॉलस्टॉय रोड और यहाँ पर है जंतर मंतर रोड. तो अभी तक जो आपने देखा वो तो झांकी है, अभी पूरा जंतर मंतर बाकी है.
8: अल्फा लेके आए कि नेक्स्ट जनरेशन भी तैयार रहे फाइट के लिए.
9: सबसे पहले बीबीसी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया गायब था, मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ बिल्कुल नहीं आ रहा था. उस वक्त में आप लोगों ने जिस तरीके से निष्पक्ष पत्रकारिता करी है, सबसे पहले आपको सैल्यूट है. और बीबीसी को मैं हमेशा से फॉलो करता रहा हूँ और हमेशा देखता रहा हूँ.

0: अच्छा थोड़ा सा लीजिए आप। नदीम भाई बहुत जबरदस्त
1: है, बताइए नदीम भाई
2: जी। मैं आपको खुद देख कर सीखा हूँ। कम्युनिटी टारगेट होता था तो न जेंजी आता था ना, दूसरे लोग आते थे सपोर्ट करने के लिए। हुआ क्या कि अब राम मंदिर में चोरी हुई, जो सबके आस्था से मुद्दा जुड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ कि इथेनॉल का मुद्दा, अमीर इलीट गरीब सब आ गए उसमें। उसके नीट का हुआ तो नीट का इलीट क्लास के बच्चे भी पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो उससे क्या हुआ कि जो 12 साल से एक आक्रोश अंदर भरा हुआ था, वो एजेंसी के मतलब इस तरह से यूथ आए फिर स्टूडेंट आए तो वो एक मुद्दा बनता चला गया।
1: रात के 12:30 बजे थे और हम ऐसे ही फुटपाथ पर बैठे थे, तो हमारे पास सामने ये आए और उन्होंने हमें खाना दिया। क्योंकि मैंने देखा था जब पिछली बार जब मैं रिपोर्ट कर रही थी तो बहुत सारे लोग यहाँ पे खाना खिला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अभी आए तो अब कुछ ही लोग रह गए, उनमें से एक हैं।
3: मैम ये था कि मतलब अभी प्रॉपर नहीं गए ना मैम, भीड़ तो है ही है ना। जो अपने लोकल थे बंदे वो तो मतलब चले गए हैं, जो दूर दूर के हैं, किसी की ट्रेन होगी या किसी का कुछ होगा वो तो कल सुबह जाएंगे या कभी भी जाएंगे, बट उनको तो भूख लगती है ना मैम।
1: एक बजने वाला है और जंतर मंतर की वो जो साइट है जहाँ स्टेज था और उसके आगे की जो सड़क थी जंतर मंतर रोड, वो पुलिस ने खाली करा दी है।
4: आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर साफ सफाई होनी है।
5: सो ये सी जी कुछ गलबात जी तुम सुनी है अंदोलन के रिलेटेड, तो नाल नाल आप अपनी भी थोड़ी जी गलत जड़िया ने जारी रख लीए, तो देखते हैं भी कि कुछ इन्फॉर्मेशन जी साढ़े को लैके आए ने साढ़े दोस्त संदीप जी जड़े ने, काफ़ी कम्यूनिटी के सरगर्म रेंदे आ बड़े लंबे समय तो, हूँ मैं देखता आ रहा उन्होंने बहुत कुछ काम किया, तो ये अज अपनी टीम के नाल साढ़े को पहुंचे जी, जिन्होंने आप गलबात करेंगे। संदीप जी सत श्रीकाल एंड वेलकम टू सबरन रेडियो जी।
6: सत श्रीकाल जी सारे, सत श्रीकाल जी अंग्रेज जी बहुत वारी अपनी गलबात जरूर हुई इथे आने बारे, पर लेकिन कदी सबब नहीं बने, अज पहली बार चलो साडे खरी किस्मत थारी सर भाग सानू इथे खिच के लेके आए तुहाडे कोल।
5: थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैनू पता भी जिन्ना तुसी काम करदे हो आपां नू रेगुलरली गलबात करदे रहना चाहिए किसी ना किसी इशू दे उत्ते जां कोई कम्यूनिटी दीआं गल्लां बातां वास्ते, बट अज तुसी पहुंचे हो क्योंकि तुसी खेड मेला करा रहे हो।
6: हाँ जी।
5: क्योंकि जो एक बंदा चंगा काम करदा तां उहनू चंगे काम करदे रहना चाहिए। आई थिंक भी ये एक चीज उत्ते नहीं फोकस होना चाहिए, तो तुसी वधिया काम कर रहे हो, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।
6: थैंक यू जी।
5: पहला मैं चाहूंगा थोड़ा जा अपनी टीम दे बारे भी इंट्रोडक्शन करा दो तुसी, क्योंकि आज अपने दोस्तों दे नाल पहुंचियो।
6: असी पहला तो मैं अपनी सोसाइटी दा इंट्रोडक्शन कराऊंगा जी। साडी हैगी आ ओवरसीज कल्चर सोसाइटी, जेड़े कि असी लोकल इवेंट कराने आ एड्री विच सराउंडिंग एरिया एक्चुअली, ते खेड मेला हो गया, दिवाली फंक्शन हो गया, लोहड़ी फंक्शन हो गया, नवे साल दा फंक्शन हो गया, इस तरीके दे। एंड मेरा नाम संदीप रंधावा है जी, मैं सोसायटी का मैंबर हाँ जी। असी सारे वॉलंटियर हाँ, साडे च कोई प्रधान नहीं, कोई कुछ नहीं है। मेरे नाल गगनदीप सिंह जी है जी, ये भी साडे सोसायटी के मैंबर आ। रविंदर रंधावा ये भी साडे सोसायटी के मैंबर है जी।
5: जी जी बिल्कुल जी, मैं मिलता तो रहना, बट ये भी क्योंकि आपां मैं चाहता सी भी तुसी अपने तरीके दे नाल इंट्रोड्यूस कराओ अपने सारी टीम के मैंबर जी। तो सोसाइटी ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ।
6: ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ।
5: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਗੋ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਏਡਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਏਡਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ।
6: ਅਗਰ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਲਿਖਿਆ
7: ਹੈ। ਕੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ
5: ਜੀ? ਜੀ ਅੱਜ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਾਂ, ਬੰਗਾਲੀ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਹਾਂ, ਢਮਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ।
6: ਬਿਲਕੁਲ।
5: ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ।

0: और डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
0: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली है।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
0: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
2: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 7-8 PM, संडे 1-5 PM।
3: एशिया पैसिफिक इमिग्रेशन कंसल्टिंग लिमिटेड, स्टूडेंट वीजा, विस्टर वीजा, सुपर वीजा, LMIE एप्लीकेशन, फैमिली इमिग्रेशन, प्रोविंशियल नॉमिनी एप्लीकेशन, सिटीजनशिप एप्लीकेशन विच लंबा तजर्बा महारत रखता है। तो हॉडी सहूलत लिए मैं मनिंदर सिंह ढिल्लों और इंद्रजोत कौर ढिल्लों एक छत हेठ इमिग्रेशन इंश्योरेंस सेवावां प्रदान करते हैं। सानू संपर्क करने लिए 403-225-1111। मनिंदर सिंह ढिल्लों, एशिया पैसिफिक इमिग्रेशन कंसल्टिंग लिमिटेड,
4: रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, 403-225-1111.
2: From the heart of Calgary to every corner within a 250 kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca.
5: The time is 2 p.m. You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

फीसद प्रोसैसिंग हेठ अते 40 फीसद वेटलिस्ट च ने। प्रोटैक्शन श्रेणी दिया कुल 3,07,215 अर्जियां चो 54 फीसद प्रोसैसिंग हेठ अते 46 फीसद वेट लिस्ट च ने। साल 2026 लई कैनेडा सरकार कुल 3,80,000 बिनेकारां नूं स्थाई निवास देण दी योजना बना रही है। 1 जनवरी तो 31 मई 2026 दे विचकार इमीग्रेशन विभाग ने कुल 198,700 पीआर अर्जियां ते अंतिम फैसला लिया है। अगला अपडेट अगस्त दे मध या अखीर च 30 जून दे डाटे नाल आवेगा। कैनेडा च पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट देने तो इनकार किए जाने तो बाद भारतीय विद्यार्थियों का रोस प्रदर्शन लगातार वाधा जा रहा है। अलबर्टा के कैलगरी च पोर्टेज कॉलेज अते इसके भाईवाल कनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्टियोपैथिक थैरेपी के विद्यार्थियों ने सरकार का ध्यान खिंचने 24 घंटे की भुख हड़ताल शुरू कर दी है। इस प्रदर्शन च लगभग 1,000 विद्यार्थी शामिल ने, जिन्हों चो 5 तो 6 विद्यार्थी भुख हड़ताल से बैठे ने। कैनेडा के इमीग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप विभाग ने यह कह के हजारां विद्यार्थियों की वर्क परमिट अर्जी रद्द कर दी कि उन्हां वल्लों कीता गया डिप्लोमा कोर्स नॉन क्रैडिट प्रोग्राम है, जो PGWP के नियमों अनुसार वर्क परमिट लई योग नहीं है। विद्यार्थियों का दोष है कि जदों उन्होंने 2 साल पहला दाखला लिया सी तां यह कोर्स अते कॉलेज दोवें सरकारी योग्यता की सूची च शामिल सन। 2 साल की पढ़ाई पूरी करन अते लगभग $32,000 फीस भरन तो बाद हुण उन्हां नूं दस्या जा रहा है कि उन्हां दा प्रोग्राम योग नहीं है। विद्यार्थियों अनुसार यह नवा नियम वैबसाइट से बाद च अपडेट किया गया है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने मांग की है कि इमीग्रेशन विभाग अपने फैसले की दोबारा समीक्षा करे। उन्हों का कहना है कि असी इतने पूरी मेहनत और फीसा दे के पढ़ाई की है, इसलिए सानू इत्थे काम करन दा पूरा हक मिलना चाहिए है। दूजे पासे पोर्टेज कॉलेज के अधिकारियों ने कहा कि वह विद्यार्थियों की समस्या तो जाणू ने, पर यह फैसला IRCC का है। कॉलेज ने इस मामले संबंधी इमीग्रेशन विभाग नाल तालमेल करन दी सलाह दिती है। सरी के मशहूर कारोबारी रिपू दमन सिंह मलिक के कतल मामले च पहला ही उम्र कैद की सजा भुगत रहे। 25 साल टैनर फॉक्स नू अदालत ने एक होर कतल के मामले च 15 साल की कैद की सजा सुनाई है। यह सजा मार्च 2022 च एबट्सफोर्ड च एक 41 साल व्यक्ति की गोली मार के हत्या करन दे मामले च सुनाई गई है। अदालत च पेश किए गए सबूतों ते गवाहां दे बयानां दे आधार ते यह साबित होया है कि टैनर फॉक्स ने योजनाबद्ध ढंग नाल गोलीबारी की घटना नूं अंजाम दिता सी। इस मामले की जांच दौरान पुलिस ने कई तकनीकी सबूत, निगरानी कैमरिया की फुटेज अते होर अहम जानकारियां इकट्ठियां कीतियां, जिन्हां ने अदालत च दोषां नूं मजबूत किया। जिक्रयोग है कि टैनर फॉक्स नूं पहला सरी च जुलाई 2022 दौरान कारोबारी रिपू दमन सिंह मलिक की गोली मार के हत्या करन दे मामले च भी दोषी करार दिता जा चुका है। उस मामले च अदालत ने उसनूं उम्र कैद की सजा सुनाई सी। मलिक दे कतल ने ना सिर्फ कैनेडा सगों भारतीय भाईचारे च भी वड्डी चर्चा छेड़ दित्ती सी। नवे फैसले तो बाद कानूनी माहिरां दा कहना है कि यह हिंसा अपराध खिलाफ कनेडियन न्याय प्रणाली दे सख्त रुख नूं दर्शाउंदी है। अदालत ने अपने फैसले च कहा कि समाज च अजिहे गंभीर अपराधां नूं किसे भी हालत च बर्दाश्त नहीं कीता जा सकता ते दोषियां नूं कानून अनुसार सख्त सजा मिलनी चाहीदी है। पुलिस अधिकारियों ने भी अदालती फैसले का स्वागत करदिआं कहा कि हिंसक अपराधां च शामिल लोकां नूं कानून दे घेरे च लिआउणा उन्हां दी पहली तरजीह है। उन्हां कहा कि विस्थार पूर्वक जांच अते मजबूत सबूतां दे आधार ते ही इस मामले दे दोष साबित हो सके ने। कानूनी कार्रवाई ने यह भी स्पष्ट किया है कि कैनेडा च गंभीर अपराधां नाल जुड़े मामलों च अदालतां सख्त रवैया अपना रही ने अते दोषियों नूं उन्हां दे कीते दी सजा मिल रही है। 2 हफ्ते पहला अमरीकी जांच एजेंसी FBI वालों कैनेडा, यूरोप अते होर देशां दीआं एजेंसियां दे सहयोग नाल चलाए ऑपरेशन हार्डबॉल तो बाद कैनेडा च मुकम्मल शांति है। 7 जुलाई तो बाद ना किसी पंजाबी कारोबारी नूं फिरौती दी काल आई है ते ना ही किसी कारोबारी जगह या घर ते गोलीबारी दी सूचना है। कई कारोबारियों नाल गल करन ते पता लगा कि बदमाश गिरोहां विरुद्ध कसे गए शिकंजे तो बाद उन्होंने सुख का साह लिया है ते हुण कारोबारां च वाधे का भरोसा जागण लगा है। इसे दौरान यह जानकारी भी मिली है कि फरौती ते गोलीबारी गिरोहां नाल भाड़े दे काम करदे कुछ नौजवान यू टर्न लैके होर कामां दी भाल च लगे हुए ने। इसे दौरान कुछ नौजवानों की गुप्त गलबात तो पता लगा है कि वह किना बेवसियां करके बदमाश गिरोहां नाल जुड़ के उन्होंने हुक्मां की पालना करते सन। राजस्थान के गंगानगर के पिछोकड़ वाले एक नौजवान ने दसिया कि वह आयलस वाली कुड़ी के मापियां नाल 23 लाख च सौदा करके 2022 च कैनेडा पहुंचा सी।
ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਚੌਥੇ ਕੁ ਦਿਨ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ

0: ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਤੇ ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕੌਮੇਡੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੌਮੇਡੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸੁਣਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
1: आंसू गैस का गोला छोड़ा गया रात को ही मोदी जी सपने में आ गए मैंने पूछ लिया मैंने कहा मोदी जी ये पेपर लीक हो रहा है ये सब कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है और आपने कहा था शुरुआत में 15 लाख का तो मोदी जी बोले भाइयों बहनों मैंने कहा था जब मैं पीएम बनूंगा तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे और अब मुझे जरा बताइए अगर एक आध पेपर लीक होने से अगर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए आते हैं तो इसमें घाटा है क्या मैं सत्ता में रहा हूं मुझे पता है कैसे क्या होता है मैं अगर सत्ता में होता तो ये युवाओं को यहां ऐसे बिगड़ने बगड़ने नहीं देता ये माता की भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब
0: सो जी शाम रंगीला इन्होंने भी काफी रौनक लाई है रंगीले ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਟੋਪਿਕ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਲੋਅ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ
2: ਆਪਣੇ ਇਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੇ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆਏ ਅਭੀ ਸੁਲਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ हमने जर्मनी में रहने वाले भारतीय स्टूडेंट से पूछा वो जब यहाँ पर आए जर्मनी आए उन्होंने चूज किया कि वो जर्मनी आकर पढ़ाई करेंगे तो उसके पीछे क्या कारण थे क्या वो भी आजिज आ गए थे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से कि उन्होंने इवेंचुअली चूज किया कि वो यहाँ आकर पढ़ाई करें क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एजुकेशन लोन लेकर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर भी सिनेरियो बहुत ही यूटोपियन नहीं होता है सब कुछ एकदम फेरी टेल नहीं बन जाता है यहाँ पर आकर भी उनको मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं
3: The reason कि मेरे को जर्मनी आना था इज ऑल्सो क्योंकि एक तो एजुकेशन यहाँ पे मोस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फ्री है या बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे है एंड द मेन रीजन इज कि यहाँ पे जब आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आते हो तो वो उनको एक्चुअली परवाह है कि आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है
2: स्टडी अब्रॉड प्लेटफॉर्म लीप स्कॉलर के मुताबिक भारत से जर्मनी के लिए स्टूडेंट एप्लीकेशन में पिछले साल के मुकाबले 370% का उछाल आया है हमने एक एजुकेटर आना से बात करके ये समझने की कोशिश की कि भारत और जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम में क्या फर्क है
4: इन द हायर एजुकेशन इन जर्मनी इंडिपेंडेंट लर्निंग इज
5: जर्मनी में हायर एजुकेशन में इंडिपेंडेंट लर्निंग पर बहुत जोर है इसीलिए यहाँ की पढ़ाई बहुत ज्यादा एग्जाम बेस्ड नहीं होती यहाँ एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कॉन्सेप्ट समझें और उन्हें अप्लाई करें
2: और अगर कोई अपनी डिग्री से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता तो उनके पास बैकअप्स भी होते

0: करते हैं, जिससे छात्रों पर दबाव काफी कम हो जाता है।
1: You can step out of university.
2: अगर आपका यूनिवर्सिटी में मन नहीं लग रहा है तो आप यूनिवर्सिटी छोड़कर वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं। इस तरह के अवसर यहाँ मौजूद हैं। आप एक दो सेमेस्टर के बाद अपना मेजर भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में तो मेरी दिलचस्पी नहीं है तो आप उसे बदल सकते हैं।
1: टू चेंज द मेजर।
0: स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि बहुत सारे ऑप्शंस और उनकी फील्ड में बेहतर फंडिंग होने की वजह से उन्होंने भारत के मुकाबले जर्मनी में पढ़ना बेहतर समझा।
3: यहाँ पे लोगों को शुरू से ही काफी अलग अलग टाइप के फील्ड, स्पेशली इन द ह्यूमैनिटीज सेक्शन, एक्सप्लोर करने का ऑप्शन दिया जाता है। एंड वहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ फंडिंग एज वेल कि आप लोग ये कर सकते हो, आप सस्टेनेबल एजुकेशन की तरफ जा सकते हो, अर्बन प्लानिंग की तरफ जा सकते हो।
4: मैं यहाँ पे पीएचडी कर रहा हूँ, देन आई एम गेटिंग पेड बाय द गवर्नमेंट फॉर डूइंग अ पीएचडी, और मनी इतना है कि मैं अपनी लाइफ यहाँ पे इजीली जी सकता हूँ। अगर इंडिया में मुझे पीएचडी करना है देन देयर आर ओनली अ हैंडफुल ऑफ इंस्टीट्यूट जहाँ पे तुम जाओगे तो तुमको आई थिंक 40K 50K समथिंग मनी मिलेगा, पर ऐसे इंस्टीट्यूट बहुत कम है।
0: जो लोग भारत से जर्मनी आए हैं, मुश्किलें उनके लिए भी कम नहीं है, चाहे वो भाषा की दिक्कत हो, पढ़ाई के लिए जो उन्होंने लोन लिया है उसे चुकाने का प्रेशर हो, या फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब ढूंढने का संघर्ष हो। फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी ने 2026 की शुरुआत में लगभग 6,30,000 वैकेंसीज दर्ज की, इनमें से ज्यादातर टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर में थी। तो फिर आखिर क्यों इंडियन स्टूडेंट्स को अभी भी जॉब मिलने में मुश्किल आ रही है?
4: लैंग्वेज ना आना सबसे पहली प्रॉब्लम होती है। लोग कहते हैं अच्छा तो लैंग्वेज सीख लो, क्या लैंग्वेज सीखने के बाद भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? नहीं, जॉब मार्केट में एक स्किल वर्सेस रिक्वायरमेंट का एक गैप है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो करंट स्किल्स हैं लोगों के वो मैच नहीं कर रहे हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको कंप्यूटर साइंस, आई हैव स्टडीड कंप्यूटर साइंस के अलावा जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, दे हैड टू एक्चुअली मूव बैक बिकॉज दे डिडंट हैव दैट अपॉर्चुनिटी। उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी, दे ट्राई टू सर्वाइव ओवर हियर फॉर लाइक अ ईयर, ईयर एंड हाफ आफ्टर देयर स्टडीज, लेकिन वो एक डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है यहाँ पे।
5: वो जब जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी हर दिन 20-20 एप्लीकेशंस बाहर आ रहे, वो बोलती थी मुझे, हम लाइक बस 20, शी लाइक हर एप्लीकेशन को ऐसा यू कांट मेक इट, हर एप्लीकेशन डिफरेंट रहना पड़ता है बिकॉज यू हैव टू शोकेस अ डिफरेंट साइड ऑफ यू बिकॉज वो लोग भी क्रॉस चेक करते हैं वैसे। तो आई थिंक शी सेंट ओवर 100 to 150 जॉब एप्लीकेशंस।
6: मुझे ये पता चला कि सिर्फ अपना कि मेरे सब्जेक्ट में डिग्री होने से ही काफी नहीं है, कि तब मुझे यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कोर्स करना पड़ा जो लैंग्वेज कोर्स होता है, वो A1 से B1 तक मुझको करना पड़ा। देन यहाँ पे मुझे और भी एक एग्जाम देना पड़ा, वो है लेबन इन डॉयचलैंड करके, जो जर्मनी के बारे में जो हिस्ट्री है वो।
0: एजुकेटर आना ने ये भी बताया कि सारे कोर्सेज में तो नहीं, लेकिन कुछ कोर्सेज पढ़ने के लिए जर्मन भाषा में C1 या C2 लेवल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
1: स्पेशली लाइक लॉ एंड मेडिसिन,
2: जैसे लॉ और मेडिसिन की पढ़ाई, ऐसे कोर्सेज के लिए जर्मन भाषा में C1 या C2 सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है।
0: छात्रों से बात करके पता चला कि कई स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं कि अगर भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा और अवसर मिलते तो शायद वो अपने घर परिवार और दोस्तों को छोड़कर जर्मनी नहीं आते।
4: अगर मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती इंडिया में और मुझे एक हालात इंडिया के अच्छे होते, आई वुड नेवर लीव इंडिया। माय फैमिली लिव्स देयर, माय फ्रेंड्स लिव देयर, एवरीवन इज देयर, दैट्स वेयर आई ग्रू अप। आई वुड डेफिनेटली लव टू गो बैक, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट सी दैट हैपनिंग एनी टाइम सून।
7: सो यह सी जी गलबात जिहड़ी तुसीं सुनी है, तो प्रोग्राम च थोड़ा जिहा अगे वधदे हां। अज दे प्रोग्राम च धालीवाल साहब भी आ चुके ने स्टूडियो च, तो जी धालीवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा।
8: अंगराज साहब तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है जी, तो 94.7 सबरंग रेडियो अते चैनल ते सारे दर्शकों का मेरे वालों बहुत बहुत स्वागत जी।
7: जी सो अज दीआं खबरां जिहड़ियां ने जी, वैसे मेन आपां खेड मेले की गलबात की, जिहड़ा कि अगले संडे नूं होण जा रहा, पर उहदे नाल नाल क्योंकि इंडिया दे विच धर्मिंदर प्रधान जिहड़े ने उन्हां दा इस्तीफा होण तों बाद काफ़ी चेंजिस आ रही हैं, तो लोग जिहड़े ने उह हुण एजुकेशन दे बारे होर गलबात करन लग पए ने। लोकल भी साडे कैलगरी च भी धरने लग रहे आ बच्चों के एजुकेशन नूं लै के, तो बट दुनिया भर दे विच जिहड़े इंडियन बच्चे आ जिहड़े बाहर जा रहे आ, तो उन्हां नूं बड़ा अजीबो गरीब लगता है कि भी अपना कंट्री छड के बाहर जाना पै रहा, जिदा उन्होंने कहा भी कि भी आप जे इंडिया च वधिया एजुकेशन सिस्टम हुंदा तो शायद आप बाहर नहीं जाते।

0: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने FIUP यानी फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किया जो इसके इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी सुधारों में से एक था। इसे तत्कालीन यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कपिल सिब्बल का समर्थन हासिल था। वाइस चांसलर दिनेश सिंह इसकी अगुवाई कर रहे थे। इसका मकसद था परंपरागत 3 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री की जगह एक 4 साल का ढांचा लाना जिसमें फाउंडेशन कोर्स, मुख्य विषय के अलावा अन्य विषयों की पढ़ाई और बीच में कोर्स छोड़ने के कई विकल्प थे। इस कदम का शिक्षक संघों और छात्र संगठनों ने व्यापक विरोध किया। उनका तर्क था कि यह कार्यक्रम बिना पर्याप्त चर्चा के जल्दबाजी में लाया गया, इसने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ाया और यह देश में मान्य 10+2+3 ढांचे से हटकर था। वर्ष 2014 केंद्र सरकार में बदलने के बाद विवाद और गहरा गया जब UGC ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को यह कार्यक्रम रद्द करने का निर्देश दिया, कहा कि यह स्थापित नियमों का उल्लंघन है। UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन उच्च शिक्षा की निगरानी करने वाली संस्था। हफ्तों के गतिरोध के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जून 2014 में FIUP वापस ले लिया और 3 साल की स्नातक व्यवस्था बहाल कर दी। हालांकि सिब्बल ने इस विवाद पर न इस्तीफा दिया न पद छोड़ा। अब बात 2000 से 2004 के मुरली मनोहर जोशी और भगवाकरण प्रदर्शन की। 1999 से 2004 के बीच बीजेपी की अगुवाई वाले NDA ने तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी के मार्गदर्शन में स्कूली पाठ्यक्रम में पूरा बदलाव किया। NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन। NCERT ने नई पाठ्य पुस्तकें पेश की जिनके बारे में आलोचकों का कहना था कि ये भारतीय इतिहास और संस्कृति की एक हिंदू राष्ट्रवादी व्याख्या को बढ़ावा देती हैं। इसका एक उदाहरण था भारतीय इतिहास में मध्यकालीन मुस्लिम योगदान को घटाने पर जोर। रोमिला थापड़ जैसी विद्वान इतिहासकार इसके खिलाफ प्रदर्शन में प्रमुख रही जिन्होंने शिक्षाविद मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरुणा रॉय और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे के खिलाफ एक PIL दायर की। उनका तर्क था कि यह ढांचा असंवैधानिक है क्योंकि इसे CAB यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन से सलाह लिए बिना लागू किया गया और इसमें धार्मिक अवधारणाओं को शिक्षा में शामिल करने पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया गया। CAB भारत का सबसे पुराना शिक्षा सलाहकार बोर्ड है। साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली पीठ ने 2-1 के बहुमत से इस PIL को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि यह ढांचा संविधान के अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करता। मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने सितंबर 2003 में इस्तीफा दिया, पर इसकी वजह ये विवाद नहीं बल्कि 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े आरोप थे। साल 2004 के आम चुनाव में NDA सरकार कांग्रेस की अगुवाई वाले UPA से हार गई। इसके बाद नए मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने औपचारिक रूप से पुरानी सरकार के शिक्षा सुधारों की कोशिश को बदलने का अभियान शुरू कर दिया और NCERT की पुरानी पाठ्य पुस्तकें बहाल कर दी। तो ये थी उन पिछले शिक्षा मंत्रियों की कहानियां जिनकी कुर्सियां युवाओं ने हिला दी जो रहे विवादों में। भारत में हुए हालिया जेंजी आंदोलन पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहे इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।
1: सिगी जी गलबात जड़ी तुसी जानी है क्योंकि अक्सर आप सोचते हैं शायद हूं ही होया एजुकेशन नू लेके विवाद ते हूं ही सब कुछ चेंज हो। इस तो पहला भी काफी जड़े ने काम होंगे आए है ते हुंदे रहने हैं क्योंकि हुंदे रहने चाहिए भी ने क्योंकि लोगों नू इंसाफ मिलता रहना चाहिए स्पेशली स्टूडेंट्स क्योंकि कई बार जेडे डिसीजन मेकर हुंदे ने वो स्टूडेंट्स के जेडे दुख दर्द जां जेडी उन्हां दी परेशानियां वो तो बड़ी दूर हुंदे है। सो इस करके जिन्नी वध तों वध जेडी इदां दे प्रोटेस्ट होण मैं समझदा ते वो जरूरी ने जदों तक कि सिस्टम जेड़ा वधिया तरीके नाल काम नहीं करना शुरू कर दिंदा। इत्थे भी आपां देखदे हां प्रोटेस्ट हुंदे आ स्टूडेंट्स दे, एक तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट देख रहे हैं जेडे हो रहे हैं बट उस तो इलावा लोकल स्टूडेंट्स भी जेडे टाइम टू टाइम प्रोटेस्ट करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने फीसा बढ़ जाए या किसी न किसी होर कारण करके। एजुकेशन की गलबात करते हैं स्कूलों के टीचर जेडे ने वो प्रोटेस्ट करते हैं, तुम देखा भी टीचरस काफ़ी वड्डी गिनती दे विच इत्थे अक्सर धरने लाते हैं क्योंकि उस छोटे स्टूडेंट्स के करके ला रहे हैं। लोकल जो आप गलबात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के जेडे टीचरस ने कारण है वो कहें भी इन्हें एक तो स्टूडेंट्स आप वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है आप डिवेल्प नेशन हाँ साढ़े को एक प्रोपर बजट है बच्चों वधिया तरीके दे नाल रखन दा जां उन्हां दे नाल काम कर करन दा। सो जो ये सारिया चीज़ा एग्जिस्ट कर दी तो फिर उन्होंने प्रोपर स्कूल क्यों नहीं मिलते उदा एजुकेशन क्योंकि टीचर्स तुहानू पता भी इतने अपनी जेब चो भी पैसे खर्च के बच्चों स्टेशनरी तो होर समान लिया के देंगे जेडे उन्होंने सिस्टम के होंगे। तो कहते भी आप बच्चों वधिया तरीके की एजुकेशन देना चाहिए।

0: सेबास्टियन आइशलर पश्चिमी जर्मनी के माइंस शहर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिवीजन में सीनियर ऑफिसर हैं। मानव तस्करी यूनिट का प्रमुख होने के नाते वो इन गतिविधियों से बखूबी वाकिफ हैं।
1: मेरा और मेरे सहकर्मियों का मुख्य काम माइंस में मानव तस्करी की संभावित पीड़िताओं का पता लगाना, फिर कार्रवाई करना और उन्हें पुलिस की मदद मुहैया कराना है।
0: आइशलर शहर में वैध और अवैध देह व्यापार पर नजर रखते हैं। वो दो महिला अफसरों के साथ कुछ स्थानीय वैश्यालयों का मुआयना करने जा रहे हैं। उनकी नज़र खास तौर पर मध्य और दक्षिण अमेरिका से आई महिलाओं पर होगी। हमें कैमरे पर सिर्फ आइशलर को दिखाने की इजाज़त है, जबकि उनके साथी गुमनाम रहना चाहते हैं।
1: हम एक रेड लाइट इलाके में जा रहे हैं।
0: जर्मनी में वेश्यावृत्ति अवैध नहीं है। वेश्यालयों के पास लाइसेंस और सेक्स वर्कर्स का आधिकारिक रजिस्ट्रेशन जरूरी है। पुलिस और प्रशासन बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वे आखिर तलाश क्या रहे हैं?
1: हम ऐसी महिलाओं की तलाश में हैं जो खुलकर बता सकें कि उन्हें ये काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उन्हें पुलिस की मदद चाहिए।
0: इस इंडस्ट्रियल ब्लॉक में उन्हें कुछ नहीं मिला। ये काम मुश्किल है और इसमें बहुत संवेदनशीलता की जरूरत है।
1: हमें इस बात की समझ होनी चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमें जानकारी दे सकें। मान लीजिए कि किसी महिला को यहाँ कोई लेकर आया हो और उसके पास सारे कागजात भी

0: नहीं हूँ, लेकिन उससे जबरदस्ती काम कराया जा रहा हो और उसकी कमाई उससे ले ली जाती हो।
1: जब हम मदद करने की बात कहते हैं तो कभी कभी कोई महिला कहती है, हाँ मैं किसी ऐसी महिला को जानती हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है।
2: ऑफिसर एक वैध वैश्यालय की जांच कर रहे हैं। यहाँ कई महिलाएं लैटिन अमेरिका की हैं और यहाँ की मैनेजर भी खुद कोलंबिया से हैं।
0: हम माइंस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी माइंस पुलिस से हैं और हम यहाँ महिलाओं की खैरियत जानने आए हैं कि वो ठीक से हैं या नहीं, ये सबसे जरूरी चीज है। तो अगर आपको लगे कि उनसे उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ कराया जा रहा है तो प्लीज मुझे फोन करिएगा।
1: ठीक है,
0: आप गुप्त रूप से मुझे फोन कर सकती हैं, हम बात कर सकते हैं अगर आपके मन में कुछ हो तो। ठीक है,
1: ठीक है।
0: लड़कियां यहां आप तक कैसे पहुंचती हैं?
1: मैं पिछले 35 सालों से ये काम कर रही हूं और ये सबसे बढ़िया है।
2: महिला अफसर मैनेजर की गैर मौजूदगी में सेक्स वर्कर से बात करने के लिए अलग अलग हो जाती हैं।
1: आपकी कमाई का पैसा आपका ही होता है?
3: हाँ, पैसा मेरा ही होता है।
1: आप खुद फैसला ले सकती हैं? आप चाहे तो मना कर सकती हैं?
4: You can say no if you want.
1: हाँ हाँ
5: yes,
1: yes. यानी आप तय कर सकती हैं कि आपको क्या करना है और कितना कमाना है?
4: Would you make?
1: हाँ, फैसला आपका होता है, आप ना कह सकती हैं?
4: You can say no.
1: हाँ नहीं।
2: महिलाएं अफसरों को बताती हैं कि वो यहाँ अपनी मर्जी से हैं और वो अपनी कमाई खुद रखती हैं। वो ग्राहकों को मना भी कर सकती हैं। आज यहाँ कोलंबिया की 4 महिलाएं हैं, सबके पास स्पेनिश पासपोर्ट है। 3 कमरे ग्राहकों के लिए हैं और 4th कमरा उनका बेडरूम है। वो क्या चार्ज करती हैं?
3: 1 घंटे का 150।
6: And how many customers do you have a day?
5: For me,
3: इसमें 90 मेरा
6: 19
3: और 60 घर का।
2: ऊपर ऊपर से तो यहाँ सब ठीक लगता है। इन महिलाओं के पास जर्मनी में वेश्यावृत्ति करने के लिए कानूनी कागजात भी हैं। लेकिन क्या वो सचमुच यहाँ अपनी मर्जी से हैं या उन पर कोई दबाव है?
0: हम यहाँ इतनी देर नहीं रुकते कि किसी महिला की असल हालत समझ सकें। वो एक्टिंग करने में माहिर होती हैं, जो उनके काम का हिस्सा ही है। ऐसे में सच पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ महिलाओं ने कहा कि काश पुलिस वहाँ होती।
1: हाल ही में एक जांच के दौरान हमें एक हम उम्र प्रेग्नेंट महिला मिली। उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, फिर भी वहाँ काम कर रही थी। उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और हमने उसे मदद की पेशकश की।
0: जब आप देखते हैं कि ये महिलाएं किस दर्द से गुजर रही हैं, तो बहुत बुरा लगता है। कभी कभी वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। तब कम से कम हम इस स्थिति में तो पहुंचते हैं कि हम उनकी मदद कर सकें, उनका सहारा बन सकें। दरअसल यही हमारा मकसद है।
2: पुलिस हेडक्वार्टर लौट कर अब समय है कागजी कार्रवाई का। रिपोर्ट लिखना, डेटा एंट्री करना और महिलाओं की जानकारी स्पेन के साथियों को जांच के लिए भेजना। लेकिन वैध वेश्यालयों की जांच करना अफसरों के काम का सिर्फ एक हिस्सा है।
0: हम हमेशा उन होटलों और शॉर्ट टर्म अपार्टमेंट्स पर नजर रखने की कोशिश करते हैं जिन्हें शायद आपराधिक गिरोह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। महिलाओं को कुछ समय के लिए यहाँ लाया जाता है और उनसे दिन रात जबरदस्ती देह व्यापार करवाया जाता है, कई बार तो लगातार 20-20 घंटों तक।
2: इन क्रिमिनल नेटवर्क्स पर समाज शास्त्री मानुएला शोन की भी नजर है, जो वीज बार्डर में महिला कल्याण के लिए काम करती हैं। पीड़ित महिलाओं की बेहतर मदद के लिए वो इस पूरे धंधे और इंटरनेट पर आने वाले विज्ञापनों को बारीकी से खंगालती हैं।
7: अखबारों को पढ़कर मुझे लगता था कि वीस बार्डन जैसे अमीर शहर में तो ऐसा कुछ नहीं होता होगा। फिर मुझे पता लगा कि ये तो मेरे अपने पड़ोस में चल रहा है।
2: जर्मनी के उदार कानूनी ढांचे के चलते तस्करों का काम आसान हो जाता है। ब्रॉथल्स और सेक्स वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, लेकिन ऐसा न करना कोई बड़ा जुर्म नहीं माना जाता है। वहीं अगर कोई महिला किसी निजी अपार्टमेंट में काम करती पकड़ी जाती है तो उसी को कानूनन जुर्माना भी भरना पड़ता है।
7: इन लाल रंग वाले इलाकों में ब्रॉथल्स को कानूनन रजिस्टर कराया जा सकता है। हमने उन सभी जगहों का नक्शा भी बनाया है जहां सेक्स वर्क होता है और आप देख सकते हैं कि पूरे शहर में और खासकर सिटी सेंटर में ऐसी कई जगहें हैं।

0: का इलाका जहां वेश्यावृत्ति पर पाबंदी है।
1: करीब 70% सेक्स वर्क बिना रजिस्ट्रेशन वाली जगहों पर होता है। संगठित नेटवर्क पर्याप्त संख्या में महिलाओं को वहां पहुंचाते रहते हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि लैटिन अमेरिका की जैसे कोलंबिया की कोई महिला ये पते खुद ढूंढ ले, खासकर जब उसे यहाँ की भाषा भी ना आती हो।
0: मानुएला को ऑनलाइन ऐसे सबूत भी मिले हैं जो पर्दे के पीछे मौजूद बिचौलियों की ओर इशारा करते हैं।
1: उस लड़की के लिए थोड़ा बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप पर वही जवाब दे रही थी। मैंने उससे 69 किसिंग या फिनिशिंग ऑन हर फेस के बारे में भी पूछा। हर बार यही जवाब मिला कि सब कुछ शामिल है, अलग से कोई चार्ज नहीं है। तो मैं मिलने के लिए बहुत बेताब था, लेकिन वहां जाकर मुझे निराशा हुई, न किसिंग न 69। फिर उसने बताया कि इसमें एक एजेंसी शामिल है जो बहुत ही बेईमान है। माफ करना, पर हम बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, हमारे साथ ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब कोई साफ देख रहा है कि कोई हैंडलर झूठे वादे कर रहा है, तो वो पुलिस को फोन करने या मानव तस्करी के बारे में सोचने के बजाय बस खुद के ठगे जाने का रोना कैसे रो रहा है। ग्राहकों का ऐसा रवैया मेरी समझ के परे है।
0: मानुएला उन ठिकानों और महिलाओं का पता लगाने के लिए व्हाट्सएप पोस्ट और विज्ञापनों का जवाब देती हैं। फिर वो और उनके साथी पीड़ित महिलाओं को उनकी भाषा में मदद की पेशकश करते हैं। इसके लिए अब स्पेनिश ट्रांसलेटर की जरूरत ज्यादा पड़ती है। ये विज्ञापन पेरू की एक महिला का है।
2: आपने उसे मैसेज कर दिया?
1: हाय डियर, मैं वालेंटीना हूँ और अभी अभी 20 बार्डन शिफ्ट हुई हूँ। मैं आधे घंटे के 100 यूरो और एक घंटे के 150 यूरो चार्ज करती हूँ।
2: वो शायद खुद फोन नहीं चला रही है।
1: स्पेलिंग एकदम सही है।
2: हमारा तजुर्बा तो यही कहता है कि इन्हें जर्मन का एक शब्द नहीं आता।
1: जब कोई तीसरा व्यक्ति इनका फोन संभालता है तो वो दूर से ही देख लेता है कि महिला के पास कितने ग्राहक आ रहे हैं। इस तरह वो उसकी कमाई का हिसाब रख सकते हैं।
0: टीम का मकसद इन पीड़ित महिलाओं को नए रास्ते दिखाना है, लेकिन पहले उनका भरोसा जीतना जरूरी है। इसलिए वो अपने साथ छोटे छोटे तोहफे ले जाती हैं।
3: ये जरा यूरोप की गलबात आप करते हैं अक्सर। हुणे पहला तो उत्थे गर्मी के नाल लोगों के मरण की गलबात की गई, बट इत्थां लैटिन अमेरिका तो कुड़ियों नूं लिजा के उत्थे उन्हां दे नाल जो कुछ गलत हुंदा है जिस तरीके दे नाल किया जाता है, हालांकि लगता है इदा है भी वह खुद मैसेज पा रही हैं या वह खुद बैनर कर रही हैं, बट वो सारा कुछ जिहड़ा इन्हां नूं जिहड़े वर्करस काम करते उन्हां नूं लगता भी ये सिर्फ उन्हां नूं फसा के ते उन्हां दे नाल ये गलत काम जिहड़ा करन वास्ते उन्हां नूं प्रोत्साहित किया जाता, उन्हां कोलों काम करवाया जाता। हालांकि लीगली जिहड़ियां जगावां उन्हां नूं मिलियां उन्हूं छड्ड के भी 70% जो दस्या जा रहा भी जिहड़ियां इहो जिहे जगावां दे उत्ते ही इह काम किए जाते हैं जिथे अलाउड नहीं हैगा। तो ये जर्मन की जी लैटिन अमेरिकन कुड़िया जिस तरीके ना वैसे दुनिया भर के कुड़िया जड़िया ने गुमराह करके लैके जाने ने बच्चे जड़े जो तुम डाटा देखते हो तो इंडिया बंगलादेश होर बाकी जड़े नेपाल वर्गे जड़े कंट्री ने इतों भी बड़िया कुड़िया के जड़े ने इनफोरमेन सामने आती है कि उन्होंने उतों किडनैप करके तो फिर स्मगलिंग की जाती तो फिर होर वक्रे वक्रे मुल्कों के लैके जाया जाता। सो ये चीज़ा जड़िया ने लंबे समय तो आ रही हैं, बट ये क्योंकि कितना कितने रोक लगनी चाहिए, पता लगना चाहिए भी ये काम जड़े ने वो थोड़े कंट्रोल किए जा सकन तो लोगों जरा बचाया जा सके। एक होर ये क्योंकि अक्सर आप गलबात करते हैं कि भी मुस्लिम भाईचारे चार औरतों विआह करन दी जड़ी इजाजत दी जाती है तो एक नवी जड़ी है वो बहस छिड़ पी है। थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर के नवे कैंडिडेट जड़े ने एक वन ऑफ द कैंडिडेट ने उन्होंने ये सुजैसट किया कि ना वैसे आ मोंग कोलकिट सुक्षी रनौट काफ़ी लंबा ना है वैसे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट ने छोटी पोलीटिकल पार्टी के तो इन्हों का कहना है कि भी औरतों राइट होना चाहिए भी वह चार हसबैंड जड़े ने वो रख सकन। सो ये जी चर्चा जी थोड़ी जी डिफरेंट चल गई क्योंकि इस तो पहला अक्सर मुस्लिम

0: ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਸ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890-687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदा लिसनिंग टू कंट्रीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबराम 94.7 FM
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today.

0: ਦੋਸਤੋ ਡੈਨ ਸਿੱਧੂ ਲਾਈਵ ਇਨ ਲੋਕ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਿੰਟੂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ 4717-1947
1: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਤ ਰਹੋ canada.ca/sarakhit-canada ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ
2: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ 94.7 FM ਤੇ ਸੁਣੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 20 ਘੰਟੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ radiosursangam.ca ਫੋਨ 403-585-0910 ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ
3: Biggest and only South Asian radio station, Sabarang Radio 94.7 FM.
4: Monday, Tuesday, Thursday, Friday, 7 to 8 p.m. Sundays, 1 to 5 p.m.
3: Visit sabarang.ca.
5: ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਸ ਇਹ ਇੱਕੋ ਕਾਰਡ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ alberta.ca/1card ਤੇ ਜਾਓ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ
6: The following program speaks to the East Indian community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
7: ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਨਈਵਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
8: भारत के इस गांव में कई औरतों के 2, 5 या 7 पति हैं और वो सबको अपने ऊपर बराबर से ही हक देती हैं। लेकिन हिंदू धर्म और इंडिया के कानून के हिसाब से तो ये लीगल ही नहीं है फिर वहाँ ये सब कैसे हो रहा है वो भी सरकार के सपोर्ट के साथ और इनफैक्ट आपको शायद हैरानी होगी लेकिन इस गांव की ज्योति शर्मा के हिसाब से सबके 2 पति तो होने ही चाहिए
9: अच्छा होता है मतलब 2 के साथ रहना मैम कुछ भी बात हो सकती है तो मतलब 1 पति के साथ ले 2 होना जरूरी है क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है एक समय का कुछ पता नहीं चलता
8: और वैसे इस बात से उनके पति को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इनफैक्ट वो ये मानते हैं कि अगर 1 पति को कुछ हो जाता है तो कम से कम दूसरा भाई तो रहेगा ना सहारे के लिए
10: एक पति मर गया तो दूसरा भाई अपनी पत्नी को वितरण करता है पोषण पालन करता है पूरा देता है
8: और ये मत सोचना कि ज्योति ने ये शादी जबरदस्ती करी है बल्कि उनके परिवार में तो यही होता ही आया है
9: जो मेरी मम्मी है वो भी जोड़ीदार वाले हैं चाची जी हैं उनके भी 2 हस्बैंड हैं वो भी जोड़ीदार में
8: इस प्रथा को कहते हैं पॉलियांड्री जोड़ीदारा या फिर द्रौपदी प्रथा जो कि हिमाचल के किन्नौर और उत्तराखंड के जौनसार बावर रीजन में होती है जो देहरादून के पास ही बसा है
11: इसमें एक औरत के कई पति हो सकते हैं जो कि अक्सर सगे भाई ही होते हैं और वो उन सारे पतियों को खुद पर बराबर से हक देती हैं
12: जैसे मतलब एक दिन एक के साथ करना दूसरे दिन दूसरों के साथ ये ऐसे है मैम कि आज एक दिन एक सोएगा दूसरे दिन दूसरा सोएगा
11: ऐसे ही केस अभी रिसेंटली हमारे सबके सामने आया था जिसमें एक औरत ने 2 भाइयों से शादी करी थी पर जोड़ीदार वाली ये शादी सिर्फ 2 ही भाइयों से नहीं बल्कि 5 भाइयों से भी हो सकती है जैसे कि उत्तराखंड की राजू वर्मा की हुई थी लेकिन ये सिलसिला सिर्फ 5 तक सीमित नहीं रहता 5, 6, 7 जितने भी भाई होंगे उनसे भी हो सकता है
13: हमारे तीनों भाई की एक ही शादी थी मेरी चाचा की लड़की वहाँ शिलाई से तो वहाँ एक लेडीज के पास 7 पति है
8: अब जब इस तरह एक लड़की एक ही परिवार के सगे भाइयों से शादी करती है तो उसे हम कहते हैं फ्रेटर्नल पॉलियांड्री जो कि हत्ती ट्राइब में काफी ज्यादा मशहूर है इसके अलावा दूसरी होती है नॉन फ्रेटर्नल पॉलियांड्री जिसमें एक लड़की जिनसे शादी करती है

0: सारे पतियों का आपस में कोई भी खून का रिश्ता नहीं होता। वैसे तो जोड़ीदारा प्रथा की शुरुआत इन कम्युनिटीज में कैसे हुई है इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कम्युनिटीज इस प्रथा को महाभारत से जोड़ती हैं। बेसिकली उनका कहना है कि महाभारत में हमारी जनजातियों का जिक्र किया गया था और वहाँ पर द्रौपदी ने भी 5 पांडव भाइयों से शादी करी थी, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हमारे घर की लड़कियां भी सगे भाइयों से ही शादी करें। हालांकि अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो इस प्रथा को फॉलो करने का एक बड़ा रीजन है जमीन।
1: ये होता था कि मतलब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट ना हो, इसकी वजह से शादियां करवाते ताकि फैमिली सेपरेट ना हो, इसीलिए ताकि न्यूक्लियर फैमिली ना हो, इसीलिए बच्चे ज्यादा हो गए। अगर अलग अलग शादियां करेंगे तो फिर बच्चे ज्यादा हो गए और उनमें प्रॉपर्टीज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी।
2: दो भाइयों के इकट्ठे बच्चे होंगे तो बंटवारा कम होगा, आपस में भी फिर मेलजोल रहता है।
3: पहले किन्नौर के अमीर परिवारों में ये प्रथा ज्यादा देखने को मिलती थी, जिससे उनकी जमीनें उनके ही घर में आए, बाहर ना जाए, क्योंकि जाहिर है जिस परिवार में जितनी ज्यादा शादियां होंगी वहां जमीन का बंटवारा भी उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए धीरे धीरे ये प्रथा आगे बढ़ती गई और उन परिवारों तक भी पहुंची जिनके पास खेत या जमीन सीमित है। वहां सगे भाइयों की शादी एक ही औरत से होने लगी और उनकी जमीनें बंटने से बच गई। जैसे मान लीजिए एक परिवार में 4 भाई हैं, सबसे बड़े भाई की शादी जिस लड़की से होगी वही लड़की उन सभी भाइयों की भी पत्नी मानी जाएगी। इनफैक्ट जॉन सार की खासा कम्युनिटी में अगर शादी के बाद भी उस लड़के के कोई भाई पैदा होगा तो वो औरत उस भाई की भी पत्नी मानी जाएगी। अब भले ही आपको ये सब सुनने में बड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन ये ट्राइब्स इन्हें खुशी खुशी मानते हैं और गर्व महसूस करते हैं,
4: क्योंकि जैसे वो थे 5 भाई, वैसे अगर हमारे में से भी कोई हो जाता है तो हमारे को बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि 5ों भाई की कमाई एक जगह रहती है। अगर 5 भाई अलग अलग शादी करेंगे तो कमाई अलग अलग जगह पर रहती है।
0: लेकिन इस प्रथा के साथ भी अभी कई सवाल जुड़े हैं, जैसे कि बच्चे उनका क्या होगा, या फिर कानून के अनुसार तो ये लीगली नहीं है, तो जरा इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब आम जनता पर लगने वाले कानून को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लॉ, और इस लॉ के अंडर स्केड्यूल ट्राइब्स को अक्सर एग्जेम्पशन दिया जाता है, यानी कि उन्हें छूट दी जाती है। अब लीगली और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बाइगमी अलाउड नहीं है, यानी आप अपने पार्टनर के जीते जी किसी और से शादी नहीं कर सकते हैं, और ना ही इंडिया में पॉलीएंड्री या फिर जोड़ीदारा प्रथा लीगल है। पर क्योंकि जौनसारा कम्युनिटी को 1967 में स्केड्यूल ट्राइब्स के तौर पर पहचाना जाने लगा और भारत सरकार ने 2023 में हत्ती कम्युनिटी को भी एसटी का स्टेटस दिया, तो स्केड्यूल ट्राइब्स होने की वजह से उन्हें अपने कल्चर के लिए स्टैट्यूटरी लॉ से एग्जेम्पशन दिया जाता है, यानी कि उन्हें छूट मिलती है।
3: पर इसमें अभी कानून का हिस्सा बाकी है। ये ट्राइब अपने कल्चर के हिसाब से जोड़ीदार प्रथा को फॉलो तो कर सकते हैं, लेकिन ऑन पेपर एक औरत का सिर्फ एक ही पति माना जाएगा, जो अक्सर सबसे बड़ा भाई ही होगा। और तो और उस औरत के जितने भी बच्चे पैदा होंगे ऑन पेपर वो सबसे बड़े भाई के ही माने जाएंगे।
5: जैसे कि जो बड़ा बेटा होगा उसके नाम पे, वो भी उसके नाम पे होंगी और बच्चे भी उसके नाम पे होंगे।
6: नाम तो जी
7: नाम तो सबसे पहले इनका आएगा जो थोड़े बड़े
0: हैं। पता कैसे चलेगा कि बच्चे किसके हैं? तो भाई इसका जवाब
8: ना, ये हमारे को भी नहीं पता कि क्या किसका कौन।
0: लेकिन इस दुनिया में औरत से जुड़ी लगभग हर प्रथा की तरह ही इस प्रथा में भी सारी औरतें खुश नहीं होती हैं। जैसे कि कई कोनों में आज भी औरतों की शादी जबरदस्ती करा दी जाती है, वैसे इस प्रथा के अंदर भी कई औरतों को बस ढकेल दिया जाता है।
9: तो मुश्किल तो होता है, पर जाना पड़ता है। हमारे को तो क्या करना, जब सासू माँ का डर आता है माँ बाप का, तो हमारे मजबूरी तो होती है, पर निभानी पड़ती है।
10: डर तो लग रहा है, डर तो क्यों लग रहा है। मैं तो छोटी थी, पर पूछते थे इनते माँ बाप जाना आपने कि ना जाना, पूछते इनते मेरे माँ बाप मेरे सासू ससुर में कुछ है बस।
0: लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो औरतें जो इस प्रथा को ऑलरेडी निभा रही हैं, वो उसका सब कुछ अच्छा बुरा जानती हैं, इसको महसूस कर चुकी हैं, क्या वो आगे भी अपने बच्चों को इसी के लिए बढ़ावा देंगी? एक प्रथा के लिए एक औरत को इतने लोगों के बीच में बांट दिया जाना, क्या वो आज के युग में सही है?
11: बिल्कुल जी, आपां ते वैसे गलबात शुरू कीती सीगी वी इस तरह औरतां नूं दित्ता जावे, बट आने वाले टाइम च ये पता नहीं किधरले पासे गलबात जाएगी। वैसे लेटेस्ट एक होर भी अमरोहा तो भी खबर आंदी है, जिथे 3 भैणां जिहड़ियां ने एक मुंडे नाल विआह करदियां, ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ
12: ਜਿਹੜੀਆਂ। ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਰੀਲਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹਸਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਕੁਛ ਚੌਂਕਾ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇ ਅਮਰੋਹਾ ਸੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੀਲਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ जिसने शुरुआत

में तो लोगों को ऐसा लगा कि ये सिर्फ व्यूज और फॉलोअर्स पाने का एक पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन जब इस रील्स का सच कैमरे के सामने आया तो हर कोई हक्का बक्का रह गया, हैरान रह गया। एक ही मंडप, एक ही दूल्हा और तीन सगी बहनें। सवाल ये उठने लगा कि क्या इंटरनेट पर वायरल हो रही यह वीडियो महज एक ड्रामा या फिर एक ऐसी शादी जिसने कानून से लेकर समाज तक में तहलका मचा दिया है। आखिर क्या है ये? क्यों इस वीडियो को देखकर सभी लोग चौंक गए जब इसका सच सामने आया? बताएंगे आपको सब कुछ इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंह।

0: पूरा मामला अमरोहा जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के धोरिया गांव का है। यहां पेशे से किसान रमेश की तीन बेटियां हैं, सरोज, सावित्री और संतोष। बीते बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक युवक जिसका नाम विकास उर्फ बिक्कू है, वो एक ही मंडप में तीनों बहनों की मांग में सिंदूर भरता और हवन वेदी के सामने फेरे लेते नजर आया। शुरुआत में तो इंटरनेट यूजर्स ने इसे लाइक और व्यूज जुटाने के लिए बनाई गई एक आम रील्स समझा, लेकिन सस्पेंस तब गहरा गया जब तीनों बहनें और उनका पति विकास खुद कैमरे के सामने आ गए। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि ये कोई नाटक या रील नहीं है, बल्कि रियल मैरिज यानी बिल्कुल असली शादी है।
1: तुम सब लोगों के बहुत ज्यादा सवाल है, बहुत ज्यादा, कि तुम्हारी शादी रियल है, फेक है, क्या है। अभी शादी तो रियल है और कुछ लोग हमें गलत बता रहे हैं, ज्यादातर लोग गलत ही बता रहे हैं। तुमने एक इंसान से शादी क्यों करी भाई, इसमें गलत क्या है? अगर हम अलग अलग शादी कर लेते तो वो तो ठीक है तुम लोगों की नजरों में,
2: है नहीं?
1: हमने साथ रहने की वजह से एक लड़के से शादी कर ली तो ये बहुत गलत किया।
0: और अब तुम कैमरे के सामने साड़ी पहने बैठी तीनों बहनें और उसके पति विकास के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। 20 साल की सरोज जो बीटेक की पढ़ाई कर रही है और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, अपने बाकी दोनों बहनों के साथ काफी खुश नजर आई। तीनों बहनों ने स्पष्ट किया कि वे पूरी तरह बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से विकास के साथ शादी रचाई है। उनके परिवार और परिजनों को भी इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। पति विकास ने भी कैमरे पर कहा कि वो अपनी तीनों पत्नियों के साथ बेहद खुश है और उनसे सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की कि उन्हें ट्रोल ना किया जाए। वीडियो सामने आने के बाद दावा किया जा रहा है कि ये शादी पास के ही प्रसिद्ध चामुंडा मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर की गई है। हालांकि विवाद बढ़ता देख मंदिर के पुजारियों ने अपने परिसर में ऐसी किसी भी शादी होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब वायरल वीडियो में हसनपुर नगर पालिका के बीजेपी चेयरमैन और कुछ स्थानीय महिलाएं भी नजर आई। इसके बाद से ही मामले ने तूल पकड़ लिया। धार्मिक स्थल पर इस तरह की शादी का वीडियो शूट करने और हिंदू मैरिज एक्ट के नियमों को लेकर स्थानीय हिंदू संगठनों में भारी नाराजगी है और वे इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। बता दें कि इन तीनों बहनों ने कुछ ही समय पहले इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने अकाउंट बनाए थे। महज 27 वीडियो अपलोड करने के बाद ही उनके लाखों फॉलोअर्स बन गए। शुरुआत में जब लोगों ने इसे रील समझा तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही शादी के असली होने की पुष्टि हुई सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि कुछ लोग इस अनोखी शादी का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में लोग इसे सामाजिक और कानूनी तौर पर गलत भी ठहरा रहे हैं। फिलहाल तीनों बहनें और विकास एक ही छत के नीचे खुशहाल जिंदगी बिताने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हिंदू संगठनों के कड़े विरोध और कानूनी उलझनों के बीच देखना ये होगा कि ये अनोखी शादी आगे क्या मोड़ लेती है। आपकी अपनी राय क्या है?
3: बिल्कुल जी, सोचते रहा करो जो विवाह शादियां होंगे ने, बट कई लोग जड़े ने इन्हें बिलीव करते हैं अपने आप नू अगे लेके जाते हैं। सो की स्टोरी किधर जाएगी, यह जी गल्लां पता आने वाले समय के भी करते रहेंगे। सबरंग रेडियो 94.7 जरा कि मंडे, ट्यूजडे, थर्सडे, फ्राइडे शाम को 7 to 8 ते संडे 1 बजे तो लेके 5 बजे तक सुनते। एक छोटी जी ब्रेक लेने, ब्रेक तो बाद बाकी दी गल्लां बात करते हैं।
4: मली फिजिशियन दा स्वागत करता है।
5: गर्मजोशी, समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नु कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउण लई हमेशा तैयार है।
4: हुण तुसी उनां नाल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ते पंजाबी विच वी गल्लबात कर सकदे हो, ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो।
5: नवे पेशेंट्स हुण एक्सेप्ट हो रहे ने, अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
4: कॉल करो 5873606890 लाइफलाइन।

0: मेडिकल क्लिनिक वॉक इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक
1: सन्नू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 5873606890
0: थोड़े परिवार दी सेहत साड़ी जिम्मेदारी

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कंट्रीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरम 94.7 FM।
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.

और उन्हें अपनी तीन कविताएं थमा देती है। इनमें से एक कविता का नाम है गुनाह, यानी अंग्रेजी में सिन। ये कविता एक औरत की आवाज में लिखा गया इकरारनामा है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कबूलनामा। मगर इस कबूलनामे में ना कोई शर्म है ना कोई पछतावा, इसमें है अपनी चाहतों को सही मानने का साहस और अपनी जिंदगी को अपनी ख्वाहिशों के हिसाब से जीने का ऐलान। जब ये कविता मैगजीन में छपती है तो उसके साथ छपता है उस लड़की का नाम, उसकी तस्वीर और एक छोटा सा परिचय। फरोख फरोखजाद 19 साल की एक विवाहित औरत और एक बच्चे की माँ। मैगजीन उसके चेहरे का भी जिक्र करती है, बिखरे हुए बाल, तेज नजरें। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, कैसे समाज में जहाँ सदियों से मर्द अपनी मोहब्बत, अपनी ख्वाहिशों और अपने गुनाहों को लिखते आए थे, वहां पहली बार एक औरत अपनी आवाज में बिना किसी पर्दे के अपने जिस्म और जज्बात की कहानी लिख रही थी। ये सिर्फ एक कविता नहीं थी, हजार साल की पर्शियन अदब की परंपरा को उलट देने जैसा था और इसकी कीमत उतनी ही बड़ी थी। धमकियां आती हैं, गालियां दी जाती हैं, इल्जाम लगते हैं, फरोख के पति अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं तलाक की मांग के साथ, और सबूत के तौर पर पेश की जाती है यही कविता गुनाह। फैसले की घड़ी आती है और फरोख के सामने एक सवाल रख दिया जाता है, अपना बेटा या अपनी शायरी, अपना घर या अपनी आवाज। और यही फरोख वो फैसला लेती है जो उसे 20वीं सदी की सबसे अहम पर्शियन शायराओं में शामिल कर देता है। वो एक माँ होने के बजाय एक शायरा होना चुनती है। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं खबरगांव, और आज रफ कॉपी में बात उस शायरा की जो महज अपने 32 साल की जिंदगी में ईरान में फेमिनिज्म की परिभाषा बन गई। हम बात कर रहे हैं फरोख फरोखजाद की। मैंने गुनाह किया, एक गर्म खेज गर्म तरीन आगोश में एक पुरलुत्फ गुनाह। ओ मेरे दीवाने आशिक, बस तुम्हें उसकी आंखों में चाहत की एक लौ लपकी, और प्याले में सुर्ख शराब रक्स करने लगी, और नरम बिस्तर में मेरा जिस्म मदमस्त लहरा उठा। उसके सीने पर मैंने गुनाह किया, एक लरजती और मदहोश दे कि हम बिस्तरी में एक पुरलुत्फ गुनाह। साल 1934 ईरान में रजा शाह पहलवी का शासन था, एक ऐसा दौर जहां ऊपर से आधुनिकता लाई जा रही थी, हिजाब पर पाबंदी लगाई जाती है, धर्म गुरुओं की ताकत कम की जाती है और देश को एक पश्चिमी शक्ल देने की कोशिश होती है। लेकिन इन सबके बावजूद औरतों की जमीनी स्थिति में कोई अंतर नहीं आता, और इसी विरोधाभास के बीच जन्म होता है फरोख फरोखजाद का। फरोख का घर भी कुछ ऐसा ही था, बाहर से आधुनिक लेकिन अंदर से सख्त और नियंत्रित। उनके पिता मोहम्मद फरोखजाद सेना में कर्नल थे, घर को भी वो एक बैरक की तरह चलाते थे, अनुशासन डर और सजा के साथ। घर में किताबों की कमी नहीं थी लेकिन आजादी की कमी थी। पिता ने बच्चों को पढ़ना सिखाया, मेहनत की अहमियत भी समझाई, लेकिन बेटे और बेटियों के बीच फर्क साफ था। लड़कों को तवज्जो मिलती थी और लड़कियों को सीमाएं। शायद यही वजह थी कि फरोख बचपन से ही उस दायरे को तोड़ने लगी थी। शोले वॉल पे अपनी किताब दसिन में किस्सा बताती हैं कि एक बार फरोख के भाई बैल्कनी पे खड़े होकर पेशाब कर रहे थे और फरोख को छेड़ते हुए कह रहे थे, जो हम कर सकते हैं वो तुम कभी नहीं कर सकती। जवाब में फरोख बैल्कनी के किनारे गई और वही कर दिखाया। ये सिर्फ बचपना नहीं था, एक जिद थी, बराबरी की जिद, खुद को साबित करने की जिद। इसी किताब में शोले बताती हैं कि फरोख हर वो काम करती हैं जो लड़कियों को मना होते, हाथापाई करना, पेड़ों पर चढ़ना, कुश्ती खेल और ऐसे ही कई और काम। लेकिन इस जिद के साथ एक गहरी संवेदनशीलता भी थी। अपनी कविता तोस देश में फरोख एक बचपन की घटना याद करती है। वो चुपके से बगीचे में जाती थी, पेड़ों से गिरे हुए मरे हुए चिड़ियों को उठाती थी और उनके छोटे छोटे जनाजे निकालती थी, उन्हें सूखे चमेली के पौधों के पास दफनाती थी। जिंदगी और मौत को इतने करीब से महसूस करने की आदत उनके आखिरी दौर तक उनके साथ रही। घर का माहौल सख्त था, कभी कभी हिंसक भी। पिता का गुस्सा, उनकी दूसरी शादी करना, माँ का अकेलापन, ये सब फरोख बहुत छोटी उम्र से देख रही थी। शायद इसीलिए बहुत कम उम्र में उनके भीतर एक बेचैनी जन्म लेती। किताबें उनका सहारा बनती है, हाफिज, रूमी, फिरदौसी और उन्हीं के बीच फरोख अपने लिए एक रास्ता ढूंढने लगती है। एक ऐसा रास्ता जो परिवार की बंदिशों से बाहर ले जाए, और वो रास्ता उन्हें मिलता है कविताओं में। लेकिन हर रास्ता आसान नहीं होता। जैसे ही फरोख इस तरफ बढ़ने का मन बनाती है, घर से एतराज उठने लगता है, और इस एतराज का एक नादान सा हल वो निकालती है निकाह के रूप में। मैं 16 साल की उम्र में फरोख निकाह कर लेती है परवेश शाहपुर से, जो उनसे करीब 15 साल बड़े थे। वो उनके साथ अहवाज शहर चली जाती है और एक साल के भीतर उनके बेटे कामयार का जन्म होता है। जब कामयार का जन्म हुआ तब फरोख महज 17 साल की थी। शादी जो उनके लिए एक बंदिश होनी चाहिए थी, वही उनके लिए एक अजीब सी आजादी दे देती। अब वो अपने तरीके से जी सकती है।

अपने कपड़े अपने अंदाज से पहन सकती है, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती है। वो अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर मिनी स्कर्ट पहनकर सड़कों पर निकलती है और साथ ही अपनी कविताओं के साथ तेहरान के चक्कर लगाने लगती है, एडिटर से मिलने, उन्हें सुनाने। उनकी कविता शब्द के हिंदी अनुवाद से कुछ अंश जिन्हें उपासना झा ने अनुवादित किया है। मैं नहीं पछताती, क्या तुमने देखा कि किस तरह मेरी चमड़ी फट रही है, कैसे मेरी छाती की नीली शिराओं में दूध बनता है, किस तरह मेरे निष्क्रिय यौनांगनों में खून दौड़ता है। धीरे धीरे उनकी कविताएं छपने लगती हैं और एक नाम बनने लगता है, लेकिन नाम के साथ साथ शुरू होता है एक और सिलसिला फुसफुसाहटों का, इल्जामों का। अदबी हलकों में ये कहा जाने लगता है कि फरूक सिर्फ अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को लिखना चाहती हैं, कि उनकी शायरी महज एक बहाना है। उनके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं, उनके रिश्तों पर उंगली उठाई जाती है। उनके पति जो शुरुआत में खुद फरूक की कविताओं के प्रशंसक थे, अब लगातार आ रही अफवाहों से फरूक पर शक करने लगते हैं। और फिर वही होता है जिसका जिक्र हमने इंट्रो में किया, गुनाह नाम की कविता छपती है और उनके पति और उनके रिश्ते में आखिरी दरार डालने का काम करती है। तलाक के बाद फरोग अपने बेटे की कस्टडी खो देती है, कामयार उनसे छीन लिया जाता है और उन्हें सिर्फ कुछ मुलाकातों तक सीमित कर दिया जाता है। उनके बेटे को ये यकीन दिलाया जाता है कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया अपनी शायरी और अपने सेक्सुअल डिजायर्स के लिए। ये दर्द, ये इल्जाम फरोग के साथ हमेशा रहता है। अगर तुम कभी मेरे घर आओ ए दोस्त, तो अपने साथ एक चिराग लाना और एक खिड़की भी, जिससे मैं उस खुशियों से भरी गली को देख सकूं। इसी दौर में 1955 में उनका पहला काव्य संग्रह असीर, जिसके मानी बंदी होते हैं, प्रकाशित होता है। इसमें 44 कविताएं थी और हर कविता एक नई सरहद को छू रही थी। सदियों से जहां औरतें सिर्फ कविता का विषय थी, फरोग पहली बार मर्द को अपनी नजरों से लिख रही थी, अपनी चाहत, अपनी तड़प, अपनी आवाज के साथ। तलाक, बेटे से जुदाई, लगातार लगते इल्जाम और अपने ही घर से मिलती ठंडक, ये सब मिलकर फरोग को अंदर से तोड़ने लगता है। सितंबर 1955 को वो डिप्रेशन का शिकार होती हैं। उन्हें तेहरान के रेजाई मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स तक दिए जाते हैं। वहीं से वो अपने पूर्व पति को एक खत लिखती है, मेरी सारी मानसिक तकलीफ अकेलेपन की वजह से, जब मैं अकेली होती हूँ तो कोई नहीं होता जो मेरे अंदर अच्छे ख्याल भर सके, और फिर मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया के लिए बोझ हूं और सब मुझे तिरस्कार की नजर से देख रहे हैं। 1956 में फरोग पहली बार ईरान से बाहर जाती है, एक लंबा 9 महीनों का सफर इटली और जर्मनी की ओर। पैसों की कमी है, सफर आसान नहीं है, लेकिन तेहरान से दूर जाना जरूरी है। ये रोग उन्हें थोड़ा सुकून देता है। उनकी कविता द विंड विल कैरी अस का हिंदी अनुवाद, जिसे हमने करने की कोशिश की, सुनिए। हवा हमें बहा ले जाएगी, हवा हमें बहा ले जाएगी, वो देख रही है तुम्हें और मुझे। ऐ तुम सर से पांव तक हरियाली में डूबी हुई, अपने हाथ जलती हुई यादों की तरह मेरे इश्क में भीगे हाथों में रख दो, और अपने होंठ एक गरम जिंदा एहसास की तरह मेरे मोहब्बत से भरे होंठों की नरमी के हवाले कर दो। हवा हमें बहा ले जाएगी, हवा हमें बहा ले जाएगी। उनके दूसरे और तीसरे काव्य संग्रह प्रकाशित होते हैं द वॉल और रिबेलियन नाम से। अब उनकी शायरी बदल गई है, सिर्फ इश्क या जिस्म की बात नहीं कर रही है, ये अब उस कैद की बात करती है जिसमें समाज और रिश्ते दोनों ने उन्हें जकड़ रखा था। और इसी दौर में उनकी जिंदगी में एक और नाम आता, इब्राहिम गुलिस्तान का। 1958 में तेहरान के दुरूम इलाके में स्थित गुराम फिल्म स्टूडियो में वो एक असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू करती है। यहीं उनकी मुलाकात होती है फिल्म मेकर और लेखक इब्राहिम गुलिस्तान से, और ये मुलाकात धीरे धीरे एक रिश्ते में बदल जाती है। कैसा रिश्ता, जो उनकी मौत तक चलता है। गुलिस्तान शादीशुदा थे, उनकी पत्नी फखरी इस रिश्ते के बारे में जानती थी। बाद में एक इंटरव्यू में गुलिस्तान कहते भी हैं, अगर आपके 4 बच्चे हों तो क्या आप एक को कम प्यार करेंगे, क्योंकि आप बाकी को भी ज्यादा प्यार करते हैं। ये रिश्ता समाज के लिए एक और सबूत बन जाता है। अदबी दुनिया जो पहले से ही फरोग को स्वीकार नहीं कर पाई थी, अब और ज्यादा उनके खिलाफ हो जाती है। लेकिन फरोग के लिए रिश्ता कुछ और था। 1966 में यूरोप की एक यात्रा के दौरान वो गुलिस्तान को खत लिखती है। उन खतों में एक जगह वो लिखती है, शाही तुम मेरी जिंदगी की सबसे अजीज चीज, अगर तुम अचानक चले गए तो मैं एक खाली कुएं की तरह रह जाऊंगी। ये मोहब्बत उनके लिए सहारा भी थी और उनकी जिंदगी की एक नई डेफिनेशन। उनकी कविता सुनी, जिंदगी शायद एक लंबी सड़क है जिससे हर रोज एक औरत गुजरती है हाथों में एक टोकरी लिए। जिंदगी शायद एक बच्चा है जो स्कूल से घर लौट रहा है। जिंदगी शायद वो पल है जब दो मोहब्बतों के दरमियान एक सिगरेट जलाई जाती है और थोड़ी देर के सुकून में सांस ली जाती है।
1960 में लगातार तनाव, परिवार से दूरी, पैसों की दिक्कत, बेटे की याद, ये सब उन्हें फिर से एक बार उसी अंधेरे की तरफ ले जाए।

0: करता है। वो नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है और एक बार फिर अस्पताल पहुंचती है। यहीं से फरूक की जिंदगी एक और मोड़ लेती है जहां शायरी के साथ साथ एक नया मीडियम भी जुड़ता है, सिनेमा का मीडियम। वो इंग्लैंड जाती है फिल्म मेकिंग सीखने, लौटकर अफायर नाम की फिल्म को एडिट करती है। एक तेल के कुएं में लगी आग पर बनी फिल्म जो 1961 में रिलीज होती है और सराही जाती है। धीरे धीरे फरूक सिर्फ एक शायरा नहीं रहती, वो एक विजुअल आर्टिस्ट बन जाती है और अपने सबसे बेहतरीन काम करती है 1962 में, जब फरूक अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर तबरेज के बाबागी कुष्ट यानी लेप्रोसी आश्रम में जाती है। 12 दिनों तक वो वहां के लोगों के बीच रहती है और एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है द हाउस इज ब्लैक नाम से। ये फिल्म सिर्फ एक बीमारी पर नहीं थी बल्कि उन लोगों पर थी जिन्हें समाज ने भुला दिया था, उनकी जिंदगी, उनका दर्द, उनकी खामोशी। और इस फिल्म के दौरान फरूक सिर्फ देखने वाली नहीं रही, वो जुड़ गई। इतना कि वहां के एक बच्चे हुसैन मंसूरी को अपने साथ तेहरान ले आती है, एडॉप्ट कर लेती है, उनके माता पिता की रजामंदी से उसे अपनाती है। एक बच्चा जो समाज के किनारे पर था अब उनकी दुनिया का हिस्सा बन चुका था। 1963 में ये फिल्म जर्मनी के ओबन हाउस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीतती है। पहली बार फरूक को एक गंभीर फिल्म मेकर के तौर पर देखा जाता है। 1964 में उनकी किताब रीबॉर्न आती है। यही वो मुकाम था जहां फरूक को सिर्फ एक शायरा नहीं बल्कि पर्शियन आधुनिक कविता की सबसे बड़ी आवाजों में गिना जाता है। उनकी कविताओं को अब नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। 1966 में वो फिर से लंदन जाती है, इस बार और गहराई से फिल्म मेकिंग सीखने। वापसी में इटली के एक फिल्म फेस्टिवल में एक ज्योतिषी उनका हाथ देखकर कहती है, तुम एक आदमी से बहुत मोहब्बत करती हो, तुम्हारे सामने एक खूनी हादसा होने वाला है। फरूक इस बात से घबरा जाती है, अपने लिए नहीं गुलस्तान के लिए उन्हें डर लगता है। वो अपनी बहन से कहती है अगर उसे कुछ हुआ तो वो खुद को खत्म कर देंगी। 14 फरवरी 1967 फरूक अपनी माँ से मिलने जाती है। एक लंबे समय बाद दोनों के बीच एक सुकून भरी मुलाकात होती है। जाते वक्त वो अपनी माँ को चूमती है, माँ को उनके होंठ ठंडे लगते हैं जैसे कोई अनजाना इशारा हो। फरूक हंसती है और कहती है, माँ जैसा आप हमेशा कहती हैं जो खुदा चाहता है वही होता है, और फिर वो निकल जाती है। रास्ते में एक स्कूल वैन को बचाने के लिए वो अपनी रेड जिप्सी मोड़ती है, गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है, बाहर जा गिरती है और उनका सिर सड़क के किनारे लग जाता है, उनकी मौत हो जाती है। सिर्फ 32 साल की उम्र में एक ऐसी जिंदगी जो हर मोड़ पर लड़ती रही, समाज से, रिश्तों से, खुद से, आखिर में स्कूल के बच्चों की जान बचाने के लिए खुद की जान गंवाना ज्यादा बेहतर समझती है। लेकिन मरने के बाद भी फरूक और समाज की अनबन खत्म ना हुई। कोई बड़ा धर्मगुरु उनके जनाजे की नमाज पढ़ने को तैयार नहीं था, वजह वही गुनाह लिखने वाली औरत। उनकी लाश लगभग 2 दिन तक मुर्दा घर में पड़ी रही, जैसे जिंदगी में ठुकराई गई थी वैसे ही मौत में। आखिरकार एक मौलवी ने हिम्मत दिखाई, फरूक के दोस्तों और हमअसर लोगों के कहने पर वो आगे आए और जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू किया आसमान खुल गया, तेज बर्फबारी होने लगी और मंजर कुछ वैसा ही बन गया जैसा उन्होंने अपनी आखिरी कविता लेट अस बिलीव इन द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड सीजन में लिखा था। और ये मैं हूँ एक तनहा औरत, ठंडे मौसम की दहलीज पर खड़ी, समझ की शुरुआत पर खड़ी, इस जमीन के मैले वजूद को महसूस करती हुई, आसमान की सादी और उदास मायूसी को देखती हुई और इन कंक्रीट जैसे हाथों की बेबसी को जानती हुई, मुझे ठंड लग रही है, ठंड। मैं नग्न हूँ, नग्न, और मेरे सारे जख्म मोहब्बत से हैं, मोहब्बत से। फिर से मेरे लबों के चश्मे से प्यासे होठों ने पानी पी लिया है और फिर से मेरी बाहों के बिस्तर में एक मुसाफिर ने सुकून पाया है। आओ यकीन करें इस ठंडे मौसम की शुरुआत पर, आओ यकीन करें ख्वाबों के बाग के खंडहरों पर, उन दरांतियों पर जो अब तक बेकार पड़ी है और उन बीजों पर जो कैद में है। देखो कैसी बर्फ गिर रही है, शाखें फिर खिलेंगी मेरे अजीज, आओ यकीन करें इस ठंडे ऋतु की शुरुआत पर। उनकी मौत के 12 साल बाद साल 1979 की इस्लामी क्रांति में ईरान की नई इस्लामिक सरकार ने फरूक फरूकजाद की कविताओं पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया। उनके लेखन को अनैतिक मानते हुए उनके प्रकाशक को उनकी किताबें छापना बंद करने का आदेश दिया, लेकिन उनके प्रकाशक ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनकी प्रिंटिंग प्रेस को जला दिया जाता है तमाम किताबों के साथ। इसके बावजूद फरूक की रचनाएं पूरी तरह गायब नहीं हुई, उनकी किताबें अनौपचारिक तरीकों से छपती और पढ़ी जाती रही और आज भी फेमिनिज्म के विचार को आगे रखने वाली शायराओं में सबसे बड़े चेहरे की तरह याद की जाती है। ये थी फरूक फरूकजाद की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
1: ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਹਿਰਾਨ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ

0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app, available now for free on your device's player or app store, connecting you to the community anytime, anywhere.
1: अल्बर्टा वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अब आप अपना हेल्थ नंबर और कैनेडियन नागरिकता का प्रमाण अपने ड्राइविंग लाइसेंस और पहचान पत्र पर ही प्राप्त कर सकते हैं। अब कागज के कमजोर हेल्थ कार्ड को संभालने या एक से अधिक पहचान पत्रों का बोझ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक ही कार्ड और सब कुछ आसान। आवश्यक सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बस यह एक कार्ड ही पर्याप्त है। अधिक जानकारी के लिए alberta.ca/1कार्ड पर जाएं। अल्बर्टा सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: 94.7 FM रेडियो सुरसंगम हर हफ्ते वीकेंडे सुनो मंडे टू फ्राइडे शाम 4 टू 5 कुलदीप सिंह विचार चर्चा शाम 8 टू 9 जितेंद्र पन्नू रेडियो सुरसंगम.ca फोन 403-585-0910 रेडियो सुरसंगम
1: अल्बर्टा के रहने वालों के लिए एक अहम खबर अब आप अपना हेल्थ नंबर और कैनेडियन शहरियत का सबूत अपने ड्राइविंग लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड पर ही हासिल कर सकते हैं अब कागज के कमजोर हेल्थ कार्ड संभालने या एक से ज्यादा शनाख्ती कार्ड का बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं है जरूरी सरकारी कामों के लिए बस अब एक कार्ड ही काफी है मजीद मालूमात के लिए alberta.ca/1कार्ड पर जाएं हुकूमत अल्बर्टा की तरफ से एक पैगाम
3: The following program speaks to the East Indian community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.